किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: House.
1: शबनम साही,
2: हंसते हुए आते हैं सब, फिल्म को देखने के बाद रोता हुआ जो जाएगा ना, वो सिकंदर का मुकद्दर जाने मन कहलाएगा.
1: नेक्स्ट ऑन सनराइज, द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल मैन एंड वेल वुमन सप्लीमेंट्स फॉर मेन एंड फॉर वुमेन, फॉर व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट यू, फ्रॉम विटाबायोटिक्स, द यूकेस नंबर वन विटामिन कंपनी, अवेलेबल फ्रॉम फार्मेसीज, सुपरमार्केट्स एंड विटाबायोटिक्स.com. फॉर नंबर वन verification, see vitabiotics.com.
3: He's not going to stop. There are many more in danger.
4: But yahan kuch bada khel chal raha hai.
5: Love is my biggest fear because love is death.
6: कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय. उसके फेमस लिस्ट में है मिश्ती डोई, संगीत के शौकीन लोग, मीठी बोली. पर इसी के बीच में कोई खेल रहा है खून की होली, और इसको रोकने आ रही है ऑफिसर ब्राउन. Back to Kill the Devil. Watch Brown, starring Karisma Kapoor. Now streaming on Hindi Z5.
7: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
8: Hey!

0: Gloucester, you got it right. And Nimu says, I use it in my porridge. What is it that we are looking for? The answer coming up after this break.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T&Cs apply.

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
2: Where do you buy your gold?
3: Gold Bank.
4: Gold Bank.
5: Gold Bank.
6: Gold Bank.
7: Gold Bank.
8: Gold Bank.
9: Yes, definitely Gold Bank.
2: Invest in solid 24 karat pure gold of the highest quality. Visit us at the Gold Bank, 215 The Broadway, Southall. 0203 500 1111. That's 0203 500 1111. Goldbank.co.uk.
10: 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
11: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है. ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर. सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम. फोन 0208 909 3030 और विजिट asianfuneralcare.com.
12: This is Sunrise, the UK's biggest.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।